0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।
1: अब ताजा खबर।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।

0: समिति चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर भर दिल
2: आगे समीज लोटी पढ़ती हूँ छापता ही गुरी
1: बढ़ती आ बढ़ती लोटर खाली पढ़ती बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुंगी बैंक आप ही बने आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
4: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज